0: गबनु हो लगली गबनु ककरी गलरा तिबड़ा बानी बानी बागानी मागे लगला भरे
1: Yeah.

अरे दादू समुद्र का किसी अकल से इसमें किसी या आज नगंगार बचा रहे हैं।